ऐसा नहीं चलेगा, वो अभी तुम्हें आया है। वो भाई लोगों को फिर से करने को क्या बोलते हैं?